0: श्रीदेवा
1: इसे स्वामिनी उप सबिनम सुशुद्ध सिल सुशुद्धता वे उल्पत बोहन से में यही नुबहन से आत्मन अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवात करण में नपियाय दिब अपे से अदुने में पांडु अपुदेसा अप स्वामीन वन जेसुस क्रिस्तुन महान से श्री शरीर श्री रुधिर बावट पत्वनु संदहाय उन महान से दुख सहित मरनेट सिय कमेत्तिन पू कमेत्तिन पवरादिय मिट पेर पूपे रागेनु महान से तुति पुदा एक खड़ा मिसी कीमिन श्री श्रावकेंट दुन सेक ओब सम में इनकेन अनुभव करन सब विन्म में उबुदेसा पवरादेनु लबन मागे शरीर आई रात्रि भोजने वलू पशु उन्नासे से कुशलानंद रगन नवत तुति पुदामी से किमीन से श्राव के इंटून से ओब सम मेन्गिन पाने खरान सब विन्म में अभिनव वूद अनंत वूद गिविश में मागे रुदिर कुशलानाय पौकमाव संधा बौदेश साध सियल मनुष्य अनुदेश साधे वगरुण लबन्ने मासी किरीम पिनिस में सिदु खरान है